दा तुरंत कोई जवाब नहीं दिता। दिल्ली की एक अदालत ने शनिचरवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी खिलाफ दाखिल एक रिवीजन पटीशन से अपना फैसला 21 सितंबर तक मुलतवी कर दिता है। इस पटीशन में मैजिस्ट्रेट की अदालत के 11 सितंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने सोनिया गांधी से 1983 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने तो 3 साल पहला वोटर सूची में नाम शामिल होने के दोषों की जांच करने तो इनकार कर दिता सी। विशेष जज विशाल गोगने ने फैसले का ऐलान हुण 21 सितंबर लई अगे वधा दिता है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि सोनिया गांधी को 1980 भारतीय नागरिकता नहीं सी, फिर भी उन्हों का नाँ नवी दिल्ली संसदीय हल्के की वोटर सूची में शामिल सी, जबकि उन्होंने अधिकारित तौर पर 30 अप्रैल 1983 भारतीय नागरिकता प्राप्त की सी। कांग्रेसी आगू राहुल गांधी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी दे विच पार्टी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली वाली थां ते कथित शुद्धीकरण मामले च भाजपा ते आरएसएस ते तिखा हमला किया। उन्होंने इस घटना नूं अपराध करार दिंदिया कहा कि इस संबंधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं SC ST एक्ट तहत FIR दर्ज करन दे हुक्म देने चाहिए हैं। लोग सभा दे विच विरोधी धिर दे नेता ने कहा कि घटना सिर्फ भाजपा ते आरएसएस की मानसिकता दर्शाती है जो नहीं चाहते कि दलित तरक्की करन ते सन्मान नाल जीवन बतीत करन। उन्हां केंद्र अते सूबा सरकार तो कांग्रेस प्रधान लई इंसाफ की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के भाजपा प्रधान महेंद्र भट्ट इस अपराध को जायज ठहरा रहे हैं। घटना 20 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस आगू ने कहा कि लड़ाई संविधान बचाने ते भाजपा आरएसएस की विचारधारा विचाले है। भारत देश अज भी दलितों नाल वितकरा हो रहा है। उन्होंने कांग्रसी आगू टीका राम जूली और NDA मंत्री जीतन राम मांझी दी मिसालां देंदिया कहा कि दलित व्यक्ति जिन्ना कामयाब हुंदा है उस उत्ते हमले उन्ने ही तिखे हुंदे हन। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी ते MP अमृतपाल सिंह दे करीबी साथी गुरमीत सिंह बुकनवाला नूं अपने पिता बलविंदर सिंह दे अंतिम संस्कार विच शामिल होण लई बठिंडा दी केंद्रीय जेल तों विशेष पैरोल ते रिहा किया गया। मोगा जिले विच पैंदे उन्हां दे जद्दी पिंड बुकनवाला विखे अंतिम रस्मां दौरान किसी भी अणसुखावीं घटना तों बचाउण लई भारी पुलिस तैनात की गई सी। गुरमीत बुकनवाला ने कड़ी सुरक्षा हेठ अपने पिता की चिता नूं अग्नि दित्ती। इस दुख की घड़ी विच परिवार नाल हमदर्दी प्रगटाउण लई वारस पंजाब दे समर्थक कई प्रमुख शख्सियतां अमृतपाल सिंह दे माता पिता विशेष तौर ते पहुंचे। जिक्र योग है कि गुरमीत बुकनवाला नूं पहलां कौमी सुरक्षा कानून अधीन असाम की डिब्रूगढ़ जेल विच रख्या गया सी, पर साल 2025 विच NSA दीआं धरावां हटाए जाण तों बाद उस नूं बठिंडे की जेल दे विच तब्दील कर दिता गया सी। किसान मजदूर मंगां नूं लै के भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां वल्लों सूबाई सद्दे ते DC बनाला दफ्तर अगे मोर्चा आरंभ कर दिता गया है। संबोधन करदिआं जिला प्रधान चमकौर सिंह नैणेवाल, जनरल सकत्तर जरनैल सिंह बदरा अते होरां ने कहा कि किसान मजदूरां दीआं बुनियादी ते पक्खवी मंगां दी पूर्ति अते खेती संकट तों छुटकारे लई पिछले लंबे समें तों धरनिआं रैलियां राहीं अते दर्जनावार मंग पत्र भेज के सरकारां नूं अपीलां बेनतियां कर चुके हां, पर सरकारां अंदाते वल मूंह मोड़ के बहुकौमी कंपनियां कारपोरेट घराणियां दे हितां दी रक्षा नूं तरजीह दे रहियां हन अते पैदावारी स्रोत लुटाउण लई कालियां पईआं होईआं हन। हाल ही दे विच आईआं धमकियां भरियां ईमेलां जिन्हां विच 5 सितंबर नूं बठिंडा च मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं जानों मारन दी धमकी ते जिले दीआं कुझ कंधां ते लिखे खालिस्तान पक्षी नारियां दीआं घटनावां शामिल हन दे विचकार पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 तों 7 सितंबर तक बठिंडा दा दौरा करगे। इन्हां घटनाक्रमां ने सुरक्षा एजेंसियां नूं चौकस कर दिता है। पंजाब दे मुख्यमंत्री 5 सितंबर नूं शहीद भगत सिंह स्टेडियम विखे खेडां वतन पंजाब दीआं दे चौथे एडिशन दा उद्घाटन करनगे, जिस तों बाद 6 ते 7 सितंबर नूं कुद्दा अते महराज पिंडां विच लोक मिलनियां दे प्रोग्राम होणगे। जिक्र योग है कि 26 अगस्त नूं जिला अदालत कॉम्पलैक्स ते कुछ विद्यक संस्थावां नूं बंब धमाकियां दी धमकी भरी ईमेल मिली सी। पुलिस टीमां ने तलाशी लई ते बाद विच ईमेलां नूं अफवाहां करार दिता, जदों कि संवेदनशील थावां ते सुरक्षा वधा दित्ती गई सी। इन्हां ईमेलां विच 5 सितंबर नूं बठिंडा विच मुख्यमंत्री दी हत्या करन दी धमकी वाली ईमेल भी शामिल सी। मनुखी अधिकार कारकुन भाई जसवंत सिंह खालड़ा की याद विच
6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

0: क्या निशा, तू पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती रहती है।
1: हाँ तो फैन हूँ मैं उसकी।
2: मिलवा दे फिर तुम्हें सिद्धू भाई से, भाई जैसा अपने।
1: सच में यार, सच में मिलाओगे?
0: बस इतनी सी बात, चल चलें।